0: शुद्धवर्धक औषधि वितरण सेवा उपलब्ध छ।
1: आज सम्पर्क गर्नुहोस् आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सालय छरीकोट दोलखा। फोन नम्बर 0949 421306।

विश्लेषण से मनोरंजन साहित्य और कला संस्कृति परिजन विकास कला जन पक्षीय आवाज हम रेडियो 103.4 मेगाहर्ट्ज़।

बनाया थाउले भरंग माथी हाकी जक न पत्ता को किना हेरे भय हिना भरंग मा

चरीले खानी ऐसे लुरा का फल मौमाछीले खायो ल्याउ ए एक बार को चोला भोग लागेर होला मौमाछीले खायो ले ए त्रिशुली बटा बेगर नलाई हतार अब जो बन मलाई देऊ या छौ तेरा जाना तिमलाई लिएर जाना अब जो बन मलाई दे।

विचार विश्लेषण मनोरंजन साहित्य कला संस्कृति पर्यटन र विकास कला जनपक्षीय आवाज हम रेडियो 103.4 मेगाहर्ट्ज़।

0: स्वास्थ्य वाहरु सिंगटी हेल्थ केयर एंड डायग्नोस्टिक सेंटर प्राली बेगुचार सिंगटी लामाबगर जानी बाटो को दाया पट्टी संपर्क नंबर 9764 39 57 22।
1: यो हो हम रेडियो 103.4 मेगाहर्ट्ज।